0: सना एस्त नौ सेवा हस्पिटल डुलेगौड़ा पीपी चोक में यही जेठ 20 गते शनिवार
1: पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा में कार्यरत पेट मुटु छाती सुगर तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्णराज अधिकारी
0: हाड जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर मेघराज लामिछाने
1: पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा में कार्यरत एनोमली स्कैन थाइराइड सहित भिडियो एक्सरे विशेषज्ञ डाक्टर संतोष बराल
0: वरिष्ठ मानसिक तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुभाष विजय महत छाला यौन कुष्ठ रोग एलर्जी तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डाक्टर जे महर्जन
1: फैमिली फिजिशियन एंड इमरजेंसी मेडिसिन डाक्टर रवि बहादुर गुरुङ
0: नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर साजन बराल
1: हाड जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल बिक
2: वरिष्ठ बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ बिहान 8:30 देखि 9:30 सम्म दिवसो 3 बजे देखि 4 बजे सम्म डाक्टर अमन कुमार झा
0: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुदीप गुरुङ
2: वरिष्ठ फिजियोथेरापी परामर्श तथा दैनिक उपचार डाक्टर सुसन कालु र स्नेहा मण्डल
0: बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका लागि आउनुहुने भएकाले सम्बन्धित रोगका बिरामीहरूले समयमै स्वास्थ्य उपचार गराई स्वास्थ्य लाभ लिनुहोला
1: साथै दैनिक भिडियो एक्सरे सहित 24 घण्टा डाक्टर रूपेश कुमार यादवद्वारा उपचार एवं परामर्श र फार्मेसी सेवा समेत उपलब्ध रहेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ
0: तनहु सेवा हस्पिटल दुलेगौड़ा फोन नम्बर 0564143777 मोबाइल 98564443
3: टिम अर्सोटिकरण प्रस्तुत गर्दछ
4: प्रथम अर्सोटिकरण कप 2083
3: पिरुङ स्पोर्ट्स क्लब द्वारा यही असार 17 गते देखि 20 गते सम्म भीमात रंगशालामा आयोजित 68 करोड़ कप 2083 एवं क्लब स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा उपस्थितिको लागि सम्पूर्ण खेलाड़ी खेल प्रेमी एवं संस्कृति प्रेमी महानुभावहरूमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ
4: प्रथम पुरस्कार
3: नगद रु 1,11,068 को साथमा सिल मेडल तथा प्रमाण पत्र
4: द्वितीय पुरस्कार
3: नगद रु 77,068 को साथमा सिल मेडल तथा प्रमाण पत्र
4: तृतीय पुरस्कार
3: नगद रु 44,068 को साथमा सिल मेडल तथा प्रमाण पत्र
4: सान्त्वना पुरस्कार
3: नगद रु 22,068
4: विधागत पुरस्कार तर्फ सर्वोत्कृष्ट खेलाड़ीका लागि नगद रु 5,068
3: साथै उत्कृष्ट स्पाइकर उत्कृष्ट ब्लकर उत्कृष्ट सेटर उत्कृष्ट डिफेन्डर उत्कृष्ट सर्भर उदयमान खेलाड़ी र उत्कृष्ट कोचको लागि जनही 3,068 खेल हुने स्थान भीमात रंगशाला खेल सञ्चालन यही असार 17 गते देखि 20 गते सम्म
4: अन्य आकर्षणहरू
3: मौलिक कौराहा तथा राष्ट्रिय एवं

0: मा बस्यो चुरेली पालुमा मैनाको दिलमा मलाई ठाउँ छ कि छैन।
1: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्ज।
2: एडमिशन ओपन
3: पोखरा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट PCM एफिलिएटेड टू पोखरा यूनिवर्सिटी
2: 24th इयर्स ऑफ एकेडमिक एक्सलेंस इन मैनेजमेंट
3: बैचलर प्रोग्राम
2: 4 years program of Bachelor in Business Administration BBA
3: 4 years of IT program Bachelor of Computer System and Information Technology BCSIT
2: 4 years program of Bachelor of Business Administration in Finance BBA Finance
3: Forms are available at college administration at 9 a.m. to 3 p.m.
2: Science and Management both streams can apply.
3: Last date of form submission 26th Asar 2018.
4: Entrance exam 29th Asar 2018.
3: Enter to learn, go for to serve.
2: Further details: Pokhara College of Management, PCM, Ganmargar, Nadipur, Pokhara 3, Kaski, Nepal. Telephone number 0615447615701254. Email info@pcm.edu.np. or website www.pcm.edu.np.
5: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।

0: connect your dreams, connect your future. Stay connect your heart.
1: Connect Australian Education and Visa Services. शुक्ला कंडकी चार तुले गौरा वाटिन डिपार्टमेंट भवन संगई मोबाइल 98562 3493 और 98562 3873

0: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
2: अब भी वक्त है निकलो भाइयों, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
1: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
2: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
1: बरखुदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

0: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोरबाला हिट 103.8 मेगाहर्ज।
1: स्टुडियो टाइमचेक अहिले दिउँसोको 1 बज्यो। टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साटफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।

0: उपचार डाक्टर सुसन कालुरे स्नेहा मंडर
1: बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका लागि आउनु हुने भएकाले सम्बन्धित रोगका बिरामीहरूले समयमै स्वास्थ्य उपचार गराई स्वास्थ्य लाभ लिनुहोला।
2: साथै दैनिक भिडियो एक्सरे सहित 24 घण्टा डाक्टर रूपेश कुमार यादवद्वारा उपचार एवं परामर्श र फार्मेसी सेवा समेत उपलब्ध रहेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
1: तनहु सेवा हस्पिटल दुलेगौड़ा फोन नम्बर 0564143777 मोबाइल 98564443।
3: This is Radio Dhor Barahi 103.8 MHz.
4: Station 1. Studio Tanchet.
5: Aile diusko 3 bajyo.
6: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98160 95301।
7: रेडियो थाहा छ सक्रियताको अभ्यास
8: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टुडियो टाइम
7: इट्स 3 PM।
9: हिजो जस्तो आज छैन, आज जस्तो भोलि रहने छैन। समय गतिशील छ, जब समय बोल्न थाल्छ संचार सुन्न थाल्छ। यो हो थाहा संचार नेटवर्क, समयको आवाज, समयको आवाज।

0: ஸ்டில் பன் பர்க்க சபை சமன் சைனி கத்தி மஜா ஏகை ठाउ மதர் ஜலினி பைனி.
1: हजुर, सबै सामान पाइने एउटै ठाउँ ओम भगवती मेटल एन्ड स्टील उद्योग.
2: हामी कहाँ सटर, च्यानल गेट, ट्रस निर्माण, ट्याङ्की स्ट्याण्ड, फलाम र स्टील का रेलिङ, घर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ग्रिल, स्टील का सम्पूर्ण सामानहरू, खेलौना, कुर्सी, टेबल, बेन्च लगायत फाइबर ग्यासबाट उत्पादित फन पार्क एवं बाल बालिकाका लागि आवश्यक पर्ने सामानहरू उपलब्ध छन्.
1: साथै शुक्ला गण्डकीमै पहिलो पटक कृषि फार्म तारबार, घर जग्गा, विद्यालय, संघ संस्था तारबार गरी संरक्षणका लागि अत्यन्तै उपयोगी विभिन्न साइजका जीआई जाली सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ.
2: प्रोप्राइटर ओमकार नागिला, सम्पर्क 9556060113, 9807294.
3: स्टुडियो टाइमचेक अहिले साँझको 5 बज्यो.
4: टाइमचेक को साथमा बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल, दुलेगौडा हेल्पोस्टो आफ्नै भवनमा छापावाला सुनका आधुनिक डिजाइनका तयारी गर्ग

0: 103 थोपलो 8 अंतर्मन को आवाज
1: स्टूडियो टार्गेट अहिले साँझको 6 बज्यो टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 9816695301
2: हिजो जस्तो आज छैन आज जस्तो भोलि रहने छैन समय गतिशील छ।

0: सना एस तनहु सेवा हस्पिटल दुलेगौड़ा पीपी चोक में यही जेठ 20 गते शनिवार
1: पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा में कार्यरत पेट मुटु छाती सुगर तथा थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्णराज अधिकारी
0: हाड़ जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर मेघराज लामिछाने
1: पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा में कार्यरत एनोमली स्कैन थायराइड सहित भिडियो एक्सरे विशेषज्ञ डाक्टर संतोष बराल
2: वरिष्ठ मानसिक तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुभाष विजय महत
0: छाला यौन कुष्ठ रोग एलर्जी तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डाक्टर जे महर्जन
1: फैमिली फिजिशियन एंड इमरजेंसी मेडिसिन डाक्टर रवि बहादुर गुरुङ
0: नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर साजन बराल
1: हाड़ जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल बिक
2: वरिष्ठ बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ
1: स्कैन थायराइड सहित भिडियो एक्सरे विशेषज्ञ डाक्टर संतोष बराल
2: वरिष्ठ मानसिक तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुभाष विजय महत
0: छाला यौन कुष्ठ रोग एलर्जी

0: 98533878 प्रशांत नेउपाने 98460 26925।
1: एक सय 3.8 अन्तर्मनको आवाज
2: स्टुडियो दाइचेक अहिले साँझको 7 बज्यो।
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98160 95301।
4: सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचार सुसूचित हुन पाउने तपाईको अधिकार।
5: धोरबाराही हाइलाइट्स को साथ में
6: छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवा को एउटै नाम कृष्ण आर्ट्स एन्ड अफसेट प्रेस दुलेगौड़ा बीपी चोक
5: शिलालेख र छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण काम को लागि सम्झनुहोस् सम्पर्क 98461493004।
7: नमस्कार, रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्जको साँझ 7 बजेको ढोरबाराही हाइलाइट्समा समाचार कक्षबाट सहकर्मी लक्ष्मी सुनारसँगै म सृष्टि खत्रीको स्वागत छ। ढोरबाराही हाइलाइट शुरू गरौं आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट।

बहुत लोग देखे हैं जो पार्टी नंबर्स बहुत दिल लगाकर गाते हैं, लेकिन गजलें इतने सारे लोग एक साथ गाने वाले इतने सुर में पहली बार देखा है, क्या बात है।

0: 103.8 अन्तरमन को आवाज
1: स्टुडियो तान्छेन अहिले बिहानको 5 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साटफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301